साहिब जी तू समरथ अकथ अगोचर जियो पिंड तेरी रास रहम तेरी सुख पाया सदा नानक की अरदास तू मेरो प्यारो ता कैसी भूखा तू मन वसया लगै ना दुखा सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी जैत श्री महला पंजवा शांत घर पहला एक ओंकार सतगुरु प्रसाद सलोक दर्शन प्यासी दिन सरात चितवाओ अन दिन नीत खोल कपट गुर मेलिया नानक हर संग मीत दर्शन प्यासी दिन सरात चितवाओ अन दिन नीत खोल कपट गुर मेलिया नानक हर संग मीत शांत सुन यार हमारे सज्जन एक करो बेनंतिया तिस मोहन लाल प्यारे हौ फिरों खो जंतिया तिस दस प्यारे सिर धरी उतारे एक भोरी दर्शन दीजै नैन हमारे प्रिया रंग रंगारे एक तिल भी ना तिरी जै प्रभ स्यों मन लीना ज्यों जल मीना चातरक जिवै तसंतिया जन नानक गुरपूरा पाया सगली तिखा बुझंतिया यार वे प्रै हबे सखिया मूह कही न जेहिया यार वे हिक डू हिक चाड़ै हों किस चेतेहिया हिक दू हिक चाड़े अनिक प्यारे नित कर दे भोग बिलासा तिना देख मन चाओ उठंदा हों कद पाई गुण ताशा जिनी मैंडा लाल रिझाया हों तिस आगे मन डेहिया नानक कहे सुन बिनो सुहागण मूह दस डिखा पिर केहिया यार वे पिर आपन भाणा किश निसी शंदा यार वे तै रावया लालन मूह दस दसंदा लालन तै पाया आप गवाया जय तन भाग मथाने बाह पकड़ ठाकुर हौ किदी गुण अवगुण न पछाणे गुण हार तै पाया रंग लाल बनाया तिस हबो किश सुहंदा जन नानक तन सुहागण साई जिस संग पतार वसंदा यार वे नित सुख सुखेंदी सा मैं पाई वर लोड़ींदा आया वजी वादाई महामंगल रहस थिया फिर दयाल सद नवरंगिया वड भाग पाया गुर मिलाया साध कै सतसंगिया आसा मनसा सगल पूरी प्रय अंक अंक मिलाई बिनवंत नानक सुख सुखेंदी सा मैं गुर मिल पाई आसा मनसा सगल पूरी प्रय अंक अंको मिलाई बिनवंत नानक सुख सुखेंदी सा मैं गुर मिल पाई वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

तेवड़ आपो तेवड़ तेरी दातो जिन दिन कर कै कीती रात खसम विसारह ते कम जात नानक नावै बाज सनात राग गुजरी महला चौथा हर के जान सतगुर सत पुरखा बिनो करो गुर पास।

तेरे अनेक पढ़ है बहु सिमरत शाश्वत जी कर किरिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो भाव है मेरे हर भगवंता तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुद जे वड अवर ना कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू नेह चल करता सोई तुद आपे भावै सोई वरतै जी तू आपे कर है सो होई तुद आपे सृष्ट

जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला तित सरवरड़ पहिले निवासा, पाणी पाव को तिन्ह किया, पंकज मोह पाग नहीं चले। हम देखा तह डूबी अले मन, एक ना चेतस मूड मना, हर बिसरत तेरे गुण गलिया। रहाओ ना हौ जती सती नहीं पड़या, मूरख मुगधा जन्म पाया। प्रणवत नानक तिन की सरणा, जिन तू नाही विसरया। आशा महला पंजवा पई प्राप्त मनुख दे हुरिया, गोबिंद मिलन की एह

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबे बाच बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दय रक्षा। पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा। अपना जान करो प्रात पारा हमरे दुष्ट सबै तुम कावहो। आप हाथ दय मोहे बचावहो सुखी बसै मोरो परिवारा। सेवक सिख सबै करतारा मोर अच्छा निज कर दय करिय। सब बैरन कौ आज संगरिय पूरन होए हमारी आशा। तोर भजन की रहे प्यासा तुम है शाड कोई अवर ना त्याओ। जो बर चाहो सो तुम ते पाओ। सेवक सिख हमारे तारिया है चुन चुन सत्र हमारे मारिया है। आप हाथ दय मुझे उबरिया मरण काल का त्रास निवरिया। हु जो सदा हमारे पच्छा श्री अस तुज जू करे हो रक्षा। राख ले हो मोहे राखन हारे साहेब संत सहाय प्यारे। दीन बंध दुष्टन के हंता तुम हो पूरी चतुर्दस कंता। काल पाए ब्रह्मा बप तरा काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कार विसन प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा।

ताहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जक्षण उपजायो आद अंत एक अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा।

बाध कियो, घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पशानत, चीटी ते कुंचर अस थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पशान, घट घट के पट पट की जान, जब उदकर्ख करा करतारा, प्रजा तरत तब देहे अपारा, जब अकर्ख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तार सब हूँ, जेते बदन श्रेष्ठ सब तार, आप अपनी बूझ उचार, तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत बेद भेद अर आलम, निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनिल अनाद असंभ, ताका मूड उचारत भेदा, जाको भेव ना पावत बेदा, ताको कर पाहन अनुमानत, महामूड काश भेद ना जानत, महादेव कौ कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह पेव, आप अपनी बुद्ध है जेती, वर्णत भिन्न भिन्न तोहे तेती, तुमरा लखा न जाए पसारा, केह बिद सजा प्रथम संसारा, एक रूप अनूप सरूपा, रंक पयो राव कही पूपा, अंडज जे रज से तज कीनी, उत पूज खान बहुर राच दीनी, कहूं फूल राजा हुआ बैठा, कहूं सिमट पयो संकर इकैठा, सगरी सृष्ट दिखाए अचम भव, आद जुगाद स्वरूप स्वयं भव, अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगरो, दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रण काता, जे अस तुज तब सरनी परे, तिनके दुष्ट दुखित हवै मरे, पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे, जो काल को एक बार त्याय है, ताके काल निकट नह आय है, रक्षा होए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला, कृपा दृष्ट तन जाहे निहर हो, ताके ताप तनक मह हर हो, रिद सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शाह श्वाय सकै न कोई, एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फास ते ताहे उबारा, जिन नार नाम तिहारो कहा, दारिद दुष्ट दोख ते रहा, खड़ग के तमै शरण तिहारी, आप हाथ दै लेहो उबारी, सर्ब ठौर मोहो हो सहाई, दुष्ट दुख ते लेहो बचाई, सवैया पाए गाहे।

आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया सहज सेती मन वजिया वाधाइया राग रतन परवार परियां शब्द गावन आईया सबदोता गाव हो हरि केरा मन जिनी वसाया कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारणा अंगीकार ओह करे तेरा कारज सब सवारणा सबना गलां समरथ स्वामी सो क्यों मनहो विसारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहिबा क्या नाही घर तेरा घर ता तेरा सब किश है जिस देह सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिन कै मन वसया वाजे शब्द कनेरे कहे नानक सच्चे साहेब क्या नाही घर तेरा

पौड़ी। तिथै तू समरथ जिथै कोई नाहे, उथै तेरी रख अग्नि उदर माहे। सुन कै जम के दूत नाए, तेरै छड जाहे पौ जल बिखम असगाहो। गुर सबदी पार पाहे, जिन कौ लगी प्यास अमृत से खाहे। कल मैं एहो पुन गुण गोविंद गाहे, सब सहनु किरपाल संभाले साहे साहे। बिरथा कोई न जाए, जी आवै तुद आहे। सलोक महला पंजवा। अंतर गुर आराधना, जिहवा जप गुर नाओ। नेतरी सतगुर पेखना, श्रवणी सुनना गुर नाओ। सतगुर से तीरते आ, दरगह पाई।

साहिब जी अमय दृष्ट शुभ करे हर अघ पाप सकल मल काम क्रोध अर लोभ मो वस करे सभय बल सदा सुख मन वसै दुख संसार खोवै गुर नव निध दरियाओ जन्म हम काल खतोवै सो कहो टल गुर सेवी है एहनिस सहज सुभाए दर्शन पर

0: तुम ठाकुर तुम पैरदास जियो पिंड सब तेरी रास।
1: तुम मात पिता हम बारिक तेरे तुमरी कृपा में

0: नानक दास एह सुख मांगे मोको कर संतन की तूरे अंतर जामी पुरख विदाते शरदा मन की पूरे नानक दास एह सुख मांगे मोको कर संतन की तूरे। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी
1: की फतेह। तुदया गै अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा कहु नानक सब तेरी वड्याई कोई नाम न जाने मेरा। बोला जी वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। तीने ताप निवारण हारा दुख हंता सुखरास ता को बिगड़ न को लागे जाकी प्रभ आगे अरदास कोंका। श्री वाहिगुरु जी की फतेह। वार श्री भगौती जी की पातशाही पातशाही दसवीं प्रथम भगौती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदासें हुए सहाय अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय। श्री हर किशन ते आइए जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमर ऐ कर नौ निधावेता है सब थाई होना सहाय दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी सब थाई होना सहाय। दसा पातशाह की जोत अंतर साहेब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पाठ दर्शन दीदार का ध्यान करके बोला जी धन धन श्री गुरु नानक देव गोविंद रूप सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी आप जी का कोटान कोट शुकर लख लख धनवाद। अमृत वेले तो लैके इस वेले तक आप जी ने अपने पवित्र पावन खुले दर्शन दीदारे बख्श के समूह संतान नु निहाल किया है। अमृत वेले तो लैके इस वेले तक आप जी की हजूरी विच रहिंदे अनेक ही प्रकार दी भुलां गलतियां हो गई हो गई जान बच्चे समझ के बख्श लो। इस वेले आप जी के हजूर कीर्तन सवेले साहब जी के पाठ हुए सुखासन की सेवा हुई बाणी का पाठ करद सुखासन की सेवा करद अनेक ही प्रकार दुला गलतियां ऊन ताइया हो गई हो गई अपना मेर भरिया हथ रखे बख्श लो। इस वेले आप जी के पावन सुखासन साहब तैयार हैं आप जी अपने आसन से विश्राम करो समूह संकतान छुट्टियां बख्शो। अमृत वेले फिर दर्शन दीदारे बख्श के निहाल करना अखरवाद घाट पड़िया पुल चुक माफ करना सरबत दे का दरास करने सही संत प्यारे मिलने जिन्हें मिले तेरा नाम चितावे नानक नाम चढ़दी कला। वाहिगुरु जी का खालसा वाह।

कृष्ण बुद्ध प्रभु के सिमरन सब की शुद्ध प्रभु के सिमरन नाही दमतराशा प्रभु के सिमरन पूर्ण आशा प्रभु के सिमरन मन की मलदाय अमृत नाम अमृत माहि समाय प्रभु जी बस साद की रसन नानक जन का दासन दसन प्रभु को सिमर से तनवंते प्रभु को सिमर से पतवंते प्रभु को सिमर से जन प्रवान प्रभु को सिमर से पुरख प्रदान।

प्रभ को सिमर शेष गुवासी प्रभ को सिमर सदा अविनाशी सिमरन ते लागे जनाब दे आला नानक जन की मंगल बल प्रभ को सिमरै से पर उपकारी प्रभ को सिमरै तिन सत बलिहारी प्रभ को सिमरै से मुख सुहावे

सुख प्रभ सिमरन कंत न पार। सिमर सी जन जिन को प्रभ मेया, नानक तिन जन सरनी पया। हर सिमरन कर भक्त प्रगटाए, हर सिमरन लग बेदो पाए। हर सिमरन पै सिद्ध जति दाते, हर सिमरन नीच चाह कुंड जाते। हर सिमरन तारी सुब तरना, सिमर सिमर हर कारण करना। हर सिमरन कियो सकल आकारा, सब हर सिमरन मह आप निरंकारा। कार कृपा जिस आप बुझाया, नानक गुरमुख हर

सदन तेजत। इस देही को बहु साधन करे, मन दे कबहु न बिखया करे। जल तो वे बहु देहे अनीत, सुध कहाँ हुए गति पीत। मन हर के नाम की महिमा ऊच, नानक नाम उदरे पतित बहमूच। बहुत सियाण बजम का पौ व्यापे, अनक जतन कर तृष्णा तरपे। वेख अनेक अग्नि बुझे, कोट उपवद्र गणि सिजय। शूट स नाही उब प्याल, मोहे व्यापे माया जाल। अवर करतूत सगली जम डाने, गोविंद भजन बिन तुल नहीं माने। हर का नाम जपत दुख जाए, नानक बोले सहज सुपाए। चार पदार्थ जे को मांगे, साधना की सेवा लागे। जे को अपना दुख मिटावे, हर हर नाम हृदय सदगावे। जे को अपनी सुख लूरे, साध सांगे हम शोरे। जे को जन्म मरण दे डरे, साधना की सरणी परे। जिस जन को प्रभु दर्श पियासा, नानक ताके बल बल जसा।

कन्हेरे कोई ना जाने तुम्हारा अंत ऊंचे ती ऊंचा भगवंत सगल समग्री तुमने सूत्र धारी तुम ते स्वाज्ञकारी तुमरी गत मिर तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी सलोक देन हार प्रभु छोड़ कै लगे अन सुहाय नानक कहू न सिजई बिन नवें पत जाय इष्ट पैदी दस वस्तु ले पछे पावे एक वस्तु कारण बिखोट गवावे एक भी न दे दस भी हिर ले तो मुड़ा को कह करे जिस ठाकर सुनाही चारा ताको की जा सद नमस्कारा जाके मन लग प्रमिठा सर्व सुख ताहू मन उठा जिस जन अपना हुक्म नाया सर्व थोक नानक तिन पाय अगंत साहु अपनी निराश खात पीत बरते अन्न देवलास अपनी अमान कश बहुर साहु ले अज्ञानी मन रोस करे

मिथ्या तन धन कुटुम सुभाय मिथ्या होम ममता माय मिथ्या राज डोबन धन माल मिथ्या काम क्रोध विकराल मिथ्या रथ हस्ती असौ वस्त्र मिथ्या रंग संग मयापेक हस्ता मिथ्या तुरोह मोहभिमान मिथ्या आप सु उभर कर दुगुमान आस्त्री भगत साध की शरण नानक जप जप जीवे हर के चरण मिथ्या श्रवण बनिंदा सुन है मिथ्या हस्त बृद्र को हिर मिथ्या नेत्र पेखद पर तर रूपाद मिथ्या रसन भोजन अनुसुवाद मिथ्या चरण पर विकार को तव है मिथ्या मान पर लो लुपावे मिथ्या दानी पर पुकार मिथ्या वासलेद बेकार बिन बुझे मिथ्या सब भय सफल देह नानक हर हर नाम ले बिरथी सागत की अर्जा साज बिना कह होवत सुचा बिरथा ना बिना तन अंध मुख आवत ता कह दुर्गंध बिन सिमरन तिन रैन बिरथा बिहाये मेक बिना ज्यों के ती जाए गोविंद भजन बिन बिरथी सब काम ज्यो कृपन के नरार्थ दाम तन तन ते जन जे कट सिंह नाव नानक ता के बल बल जाओ रहती अवर कश अवर कमावत।

के संग न कभू धावे, साध के संग सदा सुख पावे। साध संग बस्त अगोचर लहे, साधु के संग अजर सहे। साधु के संग वसे थान उचे, साधु के संग महल पंचे। साध के संग दृढ़ सर्व धर्म, साध के संग केवल पर ब्रह्म। साध के संग पाई नाम निधान, नानक साधु के कुर्बान। साध के संग सब कुल उधारे, साध संग साजन मीत कुटुंब निस्तार। साधु के संग सो तन पावे, जिस तन दे सब को बरसावे। साध संग धर्म राय करे सेवा, साधु के संग शोभा सुर देवा। साधु के संग पाप पलायन, साध संग अमृत गुण गायन। साधु के संग सर्व थान गम, नानक साधु के संग सफल जन्म। साधु के संग नहीं कछ काल, दर्शन भेट तो होत निहाल। साधु के संग गलुखत हरे, साधु के संग नरक पर हरे। साध के संग इहा उहा सोहेला, साध संग विसरत हर मिला। जो विषय सोई फल पावे, साध के संग व्यर्थ जावे। पार ब्रह्म साध रित बसै, नानक उदरै साध सुन रसै। साध के संग सुनु हर नाव, सा संग हर के गुण गाव। साध के संग न मनते विसरै, साध संग सर पर निसतरै। साध के संग लगै ब्रह्मीठा, साधु के संग घट घट डिठा।

ब्रह्म ज्ञानी कह होय सो फला ब्रह्म ज्ञानी सो फल फला ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उधार नानक ब्रह्म ज्ञानी जपे सगल संसार ब्रह्म ज्ञानी के कह रंग ब्रह्म ज्ञानी के बसे प्रभ संग ब्रह्म ज्ञानी का नाम आधार ब्रह्म ज्ञानी का नाम परवार ब्रह्म ज्ञानी सदा सत जागत ब्रह्म ज्ञानी अहमद त्यागत ब्रह्म ज्ञानी कह मन मन परमानंद ब्रह्म ज्ञानी के घर सदयानंद ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का वेता ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता ब्रह्म ज्ञानी का होय अचिंत ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभ आप ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़भागी पाई है ब्रह्म ज्ञानी को बाल बाल जाइए ब्रह्म ज्ञानी को खुज महेश्वर नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाही ब्रह्म ज्ञानी का सगल मान माही ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद ब्रह्म ज्ञानी को सदयादेश ब्रह्म ज्ञानी का कथया न जया दाखिर ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर

उत्तम होवै। भगवंत की टहल करै नित नीत, मान तन अरबै बिसन प्रीत, हर के चन हृदय बिसावै, नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावै। सो पंडित जो मन प्रबुदै, राम नाम आत्म सुदै, राम नाम सार रस पीवै, उस पंडित कै उपदेश जग जीवै, हर की कथा हृदय बसावै। सो पंडित फिर जो उन्होंने आवे।

तैस अमृत तैसी विक खटी तैस मान तैस अभिमान तैस रंग तैस राजन जो वरताई साई जुगत नानक ओ पुरख कही है जीवन मुक्त पार ब्रह्म के सगले ठव जेत जेत घर रखै तैसा तन नाव आपे करन क्रमन जोग प्रभावे सोई फन होग पसरु आप होए आनंद तरंग लखे न जाहे पार ब्रह्म के रंग

वेद अनंत प्रकार अष्टारी, कई कोट भय पुजारी, कई कोट आचार व्यवहारी, कई कोट भय तीर्थवासी, कई कोट मन प्राण है उदासी, कई कोट वेद के श्रोते, कई कोट तद पिसर होते।

कोट अंध ज्ञाने, कई कोट कृपन कठोर, कई कोट अपेक आत्मन कोर, कई कोट पर दर्व को हिरा, कई कोट पर दुख न करह, कई कोट मय शर्मा है, कई कोट परदेश परमा है। जेत जित लाभ हो तेत तित लगना, नानक करते की जाने करता रचना, की कोट सिद्ध जिति जोगी, की कोट राजे रस भोगी, की कोट पंखी सर्प पाए, की कोट पाथर बिरख ने बजाए, की कोट पवन पानी बसंतर, की कोट देश भू मंडल, की कोट सस्य सुन खेतर, की कोट देव दान इंद्र सिर शत्र, सगल समग्री अपने शुद्ध धारे, नानक जिस जिस भावे तिस तिस निस्तारे, की कोट राजस तामस सातक, की कोट वेद प्राण सिमरत अर शास्त्र,

सोए। कई कोट पार ब्रह्म के दास तिन होवत आत्म प्रगास। कई कोट दत्त के बेते सदा निहार एको नित्रे। कई गुण नाम रस पीवे अमर भय सद सद ही जीवे। कई गुण नाम गुण गावे आत्म रास सुख सहज समावे। अपने जन को सास सास मरे नानक कोई परमेश्वर की प्यारी। सुलोक करण कारण प्रविक है दूसर नाही कोई। नानक तिस बलिहारण जल थल महियल सो। अष्टपदी करण करावन करने जोग जो तिस भावे सुई होग। खिन में था वो था पनहारा अंतने किश पारा वारा। हुक्मे तार अतर रहावे हुक्मे बुझ हुक्म समावे।

स्वस्ति रखे प्रभु पावे त हर गुण पखे प्रभु पावे त पत तो उधर आप करे अपन विचारे दुहा श्रेया गव स्वामी खिले विकसे अंतर जामी जो पावे सो कर करावे नानक दृष्टि उर न आवे कहो मानुक ते क्या हो आवे ज्योतिष पावे सोई करावे इसके हाथ हुए तो सब कुछ ले ज्योतिष पावे सोई करे अन जानत विख्या मेर चै जे जानत अपन अब जय परमे पुला दह दिस तवे निमक माय चर कुंड फिर आवे करि कृपा जिस अपनी भगत दे नानक ते जन नाम मिले खिन मैं नीच कीट को राज पर ब्रह्म ग्रीव नवाव जाग दृष्ट कछु न आवे तिस तत्काल दिस दिस प्रगट आवे जाओ को अपनी करे बख्शीस तां गा लेखा नगर जगदीश जियो बिन सब तिस की रास घट घट पूर्ण।

निर्द कृप पात, कबहु सोय रह दिन रात, कबहु महाक्रोध विकराल, कबहु सर्व की हो तरवाल, कबहु होय भय बड़ राज, कबहु पेखारी निज का साज, कबहु अवकीर्त में आवे, कबहु भला भला कहावे, ज्यो बल रखे ते भी रह, गुर प्रसाद नानक सच कहे, कबहु होय पंडित करे बखियान, कबहु मौन तारी लावे ध्यान, कबहु तट तीर्थ स्नान, कबहु सिद्ध साधक मुख ज्ञान, कबहु कीट हस्त पतंग हुए जिया, अनक जोन परमे परमिया, नाना रूप जो स्वागी दिखावे, ज्यो प्रभावे ते वे नचावे, जो तिस पावे सोई होए नानक दूजा वरन को, कबहु साध संगति हो पावे, उस स्थान ते बहुन आवे,

जब लग मोह मंगन संग माई तब लग धर्म राय दे सजाए प्रभु कृपा दे बंधन टुटे गुरु प्रसाद नानक हो छुटे सहस खटे लख कोट तावे तृप्त न आवे माया पछे पावे अनेक भोग बिखे की करे नह तृप्तावे खप खप मरे बिना संतोख नहीं को राजे स्वप्न मनोरथ बिरति सब काज नाम रंग सर्व सुख होई बड़ भागी किसे प्राप्त होई करन करावनी अपे आप सदा सदा नानक हर जाप।

साध संग बिन सह सब संग चरण चलो मार्ग गोविंद मिट पाप जपिय हर बिंद कर हर कर्म श्रवण हर कथा हर दर्ग नानक जल मथा बड पागे ते जन जग माहे सदा सदा हर के गुण गाहे राम नाम जो करे विचार चेतन वंद।

प्रसाद तत् सब बुझिया जप देखो तब सब किस मोल नानक सो सुखम सोई असथूल नह किस जन्म नह किस मर आपन चलता पही कर आवन जावन दृष्ट अन दृष्ट आज्ञाकारी तारी सब श्रेष्ठ।

जागृत स्वाद प्राव्याय तत्ज्ञान तिस मन प्रगटाय पैत निरप हो बसाना जिस ती उपजियत सुमाहे सुमाना वस्तु माहे ली बस्त गडाई ता को फिर न कह न जाय बुझै बुझनहार विवेक नारायण मिले नानके ठाकुर का सेव का क्या करी ठाकुर का सेव सदा पुजारी ठाकुर की सेवक है मन प्रनीत ठाकुर की सेवक निर्मल रीत ठाकुर को सेवक जन संग प्रभु का सेवक नाम करंग

सेवकी रख निरंकारा। सो सेवक जिस दया प्रभु धरे, नानक सो सेवक सा सा सुमर। अपने जन का पर्दा ढके, अपने सेवक की सरबर रखे। अपने दास को दे बढ़ाई, अपने सेवक को नाम जपाई। अपने सेवक की आपत रखे, ताकि गद मित कोई न लख। प्रभु के सेवक को न पहुंचाए, प्रभु के सेवक ऊंच ते ऊंचे। जो प्रभु अपनी सेवा लाया, नानक सो सेवक दत प्रगटाया। नेके की मैकल रखे, पशुम करे लश्कर गोट लखे। जिसका शासन घट दिया, ताको राखत देख रहत। मानस जतन करत वो पात, तिसके करता मृत्य जात। मारन रखे अपन कोई, सर्व जिया कर रख सोय। काहे सोच कर प्राणी, जब नानक प्रभा लख विडाणी। बारंबार बार ब्रह्म जपिया, पी अमृत एहो मन तन त्रपिया। नाम रतन जिन गुरमुख पाया, तिस किश अवर नहि दृष्टाय। नाम धन नाम रूप रंग, नाम सुख हर नाम का संग। नाम रस जो जन तृप्ता ने, मन तन नामे नाम सुमाने। उठत बैठत सोवत नाम, कहो नानक जन कै सतकाम। बोल हो जस जिवा दिन रात, प्रभ अपने जन की नींदाल। करहे भगत आत्म कह जाए, प्रभ अपने सुर है सुमाए। जो हुआ हो सुजाने, प्रभ अपने का हुक्म पछाने। तिसकी महिमा कौन बखानो, तिसका गुण कै एक न जानो। आठ पहर प्रभ से हजूरे, कहो नानक से जन पूरे। मन मेरे तिनक ओट लेहे, मन तने अपना तिन जन देहे। जेन जन अपना प्रभु पछाता, सो जन सर्व थोक का दाता। तिसकी शरण सर्व सुख पावे, तिसके दर्श सुख पावे।

पुन होयास भगत भय तुम प्रगास तेत कर जाहि बसैब नसी कहु नानक काटी जम फसी तत विचार कह जन सच्चा जन्म मरै सो काचू काचा।

सकल समय ग्रीस घटमा है अनुक्रम नाना दृष्टा है। नौ निध अमृत प्रभ का नाम देही में सका विश्राम सुन सुमाद अनहर तैनाद कह न जय आचरज विसुमाद। तेन देखिया जिसे आप दिखाए नानक तिस जन सो जी पाए सो अंतर सो बाहर अनंत घाट।

ससिय सून खित्र मय। बाणी प्रभ की सबको बोले, आप अडोल न कभू डोले। सर्व कला कर खिले खेल, मोल न पाइए गुण है अमूल। सर्व ज्योत में जाकी ज्योत, तार रहे हो स्वामी ओत पोत।

संग रचन जिन जाता तिसकी रहत सत बचन साधु सब कहत जो जो होई सोई सुख माने करन करावन हर प्रभ जाने अंतर बसे बाहर पियो ही नानक दर्शन दीक्षा मोही आप सत किया सब सत तिस प्रभ ते सकली उत्पत तिस भावै ता करे विस्तार तिस भावै ता एकंकार अनेक कला लखी न जाए जिस भावै तिसले मिलाए कावन निकट कावन कहिए दूर आपे आपा भरपूर अंतर गात से आप जनाए नानक जिस जन आप बुझाए सर्व भूता वरतारा सर्व नैन आपे खनहारा

परम हृदय नमो शस्त्र पाणे नमो अस्त्र माणे नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता अपेक्षीय परमीय भोगीय भुगते नमो जोग जोगेश्वर परम जुगते नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे नमो प्रेत अप्रेत देवे सुतर में

नमो मंत्र मंत्रंग नमो जंत्र जंत्रंग नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रंग सदा सचिदानंद सर्वं प्रणासी अनूपे रूपे समस्त निवासी

अशेतीय भेदीय नामंग कामंग समस्तो पराजी समस्तस्ता मंग तेरा जोर चाचरी छांद जले हैं थले हैं अपीत हैं अपेय हैं प्रभु हैं अजू हैं अदेश हैं अपेश है भुजंग प्रयात छांद अगाधे अबाधे आनंदी स्वरूपे नमो सर्व माने समस्त निदाने नमस्तमु निरनाथे नमस्तमु परमाथे नमस्तमु अगंजे नमस्तमु अपंजे नमस्तमु अकाले नमस्तमु अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राज राजे नमो साह साजे नमो साह साहे नमो माह माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोख रोखे नमो शोक शोखे नमो सर्वरोगे नमो सर्वभोगे नमो सर्वजीतंग नमो सर्वपीतंग नमो सर्वज्ञानं नमो सर्वपरमतानं नमो सर्वमंत्रं नमो सर्वजंत्रं नमो सर्वदृशं नमो सर्वकृशं नमो सर्वरंगे त्रिपंगीयनंगे नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे अखिजे अपिजे स्मसं प्रसिजे कृपालं स्वरूपे कुकर्मं प्रणासी सदा सर्वदा सिद्ध अरेद सिद्धंगनवासी चरपट छांद त्वय प्रसाद अमृत कर्मे अमृत तरमे अखल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्मंग अलाक कर्मंग सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग भाने सर्वंग माने सर्वंग प्राणंग सर्वंग त्राणंग सर्वंग भुक्ता सर्वंग युक्ता सर्वंग देवंग सर्वंग पेवंग सर्वंग काले सर्वंग

आप रूपम एक अन औस्तत एक पुरख अवतूत गर्भगंजन सर्वपंजन आद रूप असूत अंगहीना पंग अनात्म एक पुरख अपार सर्वलायक सर्वकायक सर्वको प्रतपार सर्वगंता सर्वहंता।

चतर चक्र करता चतर चक्र हरता चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने चतर चक्र वर्ती चतर चक्र परती चतर चक्र का पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र मान्या चतर चक्र दान्या चादरी छांदना सत्रहना मित्रहना भावना पितरहना कर्मंग न काय अजन्मंग अजाए न चित्रै न मित्रै परे है पवित्रै प्रतिसै अधिसै अदृसै अकृसै भगवती शांतवै प्रसाद कथते के आशिष देसै के

की सर्वापर्णय की जगतं कृति है, के शत्रंग क्षत्रिय है, के ब्रह्मंग स्वरूप है, के अनुभव अनूप है, के आधा देव है, के आप अपेव है, के चित्रंग भी न के कैदी न के रोजी रजा कह रही

कि राजक रहीम है, कि कर्म करीम है, कि सर्वंकली है, कि सर्वंगली है, कि सर्वत्र मान्य है, कि सर्वत्र दान्य है, कि सर्वत्र गौना है, कि सर्वत्र भावना है, कि सर्वत्र देशा है, कि सर्वत्र पेशा है, कि सर्वत्र राजा है, कि सर्वत्र साजा है, कि सर्वत्र दीना है, कि सर्वत्र लीना है, कि सर्वत्र जा हो, कि सर्वत्र पा हो, कि सर्वत्र देशा है, कि सर्वत्र पेशा है, कि सर्वत्र काल है, कि सर्वत्र पाल है, कि सर्वत्र हंता, कि सर्वत्र गंता, कि सर्वत्र पेखी, कि सर्वत्र पेखी, कि सर्वत्र काजा है, कि सर्वत्र राजा है, कि सर्वत्र सुख है, कि सर्वत्र भुख है, कि सर्वत्र त्राण है, कि सर्वत्र प्राण है, कि सर्वत्र देशा है, कि सर्वत्र पेशा है, कि सर्वत्र मान्य है, सदैव प्रधान है, कि सर्वत्र जाप्या है, कि सर्वत्र थाप्या है, कि सर्वत्र पान है, कि सर्वत्र मान है, कि सर्वत्र इंद्र है, कि सर्वत्र चंद्र है, कि सर्वं कलीम है, कि परमंग फहीम है, कि अकल अलाम है, कि साहिब कलाम है, कि हसन अलवजू है, तमाम अलरजू है, मेसुल सलाम है, सलीखत मदाम है, गनीमुल सिकस्त है।

सर्वं हन्ता सर्वं गन्ता सर्वं ख्याता सर्वं ज्ञाता सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं युक्ता सर्वं मुक्ता सावचन्त्वा प्रसाद नमो नरकनाशे सदा प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अभंगं विभूते परमात्मं परमाते सदा सर्वसाध्य गाथ स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी नामे त्रिपंगी त्रिकामे निरपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पोत्र न पुत्र न सुत्र न मित्र न ताता न माता न जाता न पाता नृसाक शरीक है अमितो अमीक है सदैव प्रभा है अजा है अजा है भगवती संत है प्रसाद के जाहर जूर है के हाजर हजूर है हमेशा सलाम है समस्तुल कलाम है के साहिब दिमाग है के हुसन उल चिराग है कि कामल करीम है कि राज करीम है

कि सर्वल गवान है, हम इसल रवान है, तमामुल तमीज हैं, समस्तुल अजीज हैं, परम परम ईस हैं, समस्तुल अदीस हैं, अदीसुल अलीक हैं, हम इसल अपीक हैं।

कर कर प्रणाम चित चरण नाम अनशुजगात जिजना बात अनचंजगात अंदरंज बात अन टुट भंडार अन ठट अपार अडीठ धर्म अत ढीठ कर्म अन

नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो जुद जुदे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलहकर्ता नमो साध रूपे नमो इंद्र इंद्रे नादंग विभूते अलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आसासे नमो बांक बंके अपंगी स्वरूपे अनंगी नामे त्रिपंगी त्रिकाले नंगी अकामे एक शांत

गाड़ी गड़ान के तोड़न हार सुबत नहीं चकचार लवैया साहिब श्री सब को सिर नायक जाच अनेक सोएक दवैया दानव देव फनिंद्र साचर भूत भविख भवान ज पैंगे जीव जिते जल मैं थल मैं पल ही पल मैं सब थापत पैंगे पुन प्रतापन बाढ़ जैत तुन पापन के बहु पुंजख पैंगे साध समूह प्रसन्न फिरै जग सत्र सवै अवलोक च पैंगे मानव इंद्र गजिंद्र नराध बजौन त्रिलोक को राज करेंगे कोट इसनान जात दान अनेक स्वंबर साज बरेंगे ब्रह्म महेश्वर विष्णु सच्ची पात्र

दोहते लोह बचाई, कृपा करी हम पर जगमाता, ग्रंथ करा पूर्ण स्वराता। किलबिक सकल देह को हरता, दुष्ट दोखिन कोशा करता, श्री अस्तुज जप भय दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला। मन बा चतफल पावे सोई, दुख न तिसे व्याप्त कोई अड़ेल, सुने गुंग जो आहे सुरस न पावई, सुने मूड चित लाई चतुरता आवई। दुख दर्द पाओ निकट न तिन नरके रहै, हो जो या कि एक बार चौपई को कहे चौपई। संबत सत्रह सहस पणि जय अर्ध सहस।

सतगुरु का उपदेश सुन तू होवै तेरा नाले, कह नानक मन प्यारे तू सदा सच संभाले, अगम गोचरा तेरा अंत न पाया। अंत न पाया किने तेरा अपना आप, तू जान ही जिए जंद सब खेल तेरा।

कहे नानक जन सच तजिया कूड़े लागे तिन्नी जन्म जुए हारिया जियो निर्मल बारह निर्मल बारह दा निर्मल जियो निर्मल सत्तिक सत गुरदे करणी कमाणी कूड़ की सोए पहुंचे नाहे मनसा सच समाणी जन्म रतन जिनी खटिया भले सेवन जारे कह नानक जिन मन निर्मल सदा रह है गुरनाले जेको सिख गुरु सेती सनमुख होवै होवै ता सनमुख सिख कोई जियो रह गुरनाले गुर के चरण हृदय त्याए अंतर आत्मै समा

मूर्ख है कोई पुछो विवेकिया जाए अनेक जूनी भरम आवे बिन सतगुर मुक्त न पाए। फिर मुक्त पाए लाग चरणी सतगुरु शब्द सुनाए कह नानक विचार देखो बिन सतगुर मुक्त न

साचा धन गुरमति पाए, काचा धन फुन आवै जाए रहाओ। मनमुख भूले सब मरह गवार, भव जल डूबे ना उरवार ना पार। सतगुर भेटे पूरै भाग, साच रत्ते

सुना है कुदरत भाव सुखसार कुदरत पातालिया काशी कुदरत सर्प आकार कुदरत वेद पुराण सतेवा कुदरत सर विचार कुदरत खाना पीना पहनन कुदरत सर प्यार कुदरत जाति जिनसी रंगी कुदरत जी जहान कुदरत ने किया कुदरत बदिया कुदरत मानव मान कुदरत पौन पानी बै संतर कुदरत

मुसलमाना से सरहित पढ़ पढ़ कर है विचार। बंदे से जे पवे विच बंदी वेखण को दीदार, हिंदू साला ही साला हन दर्शन रूप पार। तीर्थ ना व्यर्चा पूजा अगरवास बहकार, जोगी सुनते हवन जेते

0: बस्त न पहर हिंस कहर मौन विगूता क्यों जागे गुर बिन सूता पग उपे ताना अपना किया कमाना अल मलखाई सिर छाई पाई मूर्ख खंदे पत गवाई विरनावे किस थाई न पाई रह बिबाणी मणि मसाणी अंध न जाने फिर पछताणी
1: सतगुर भेटे सो सुख पाए हर का न मन वसाए नानक नजर करे सब पाए आस अंधे से तेने के बुल खाऊ में शब्द जुलाए पौड़ी भक्त रे मन पाए।

का विचार मूर्ख पंडित हिकमत हुज्जत संजय करे प्यार धर्मी धर्म करे गावा वह मंगे मुख द्वार जति सदावे जुक्त न जाने छड़ बह कर बार सबको पूरा आपे हो।

होई बलिहारी कुदरत वस्या तेरा अंत न जाई लख्या रहाओ जात में जो जोत में जाता कलकला पर पू रहा तू सच्चा साहेब सिर्फ सवाल्यो जिन की तीसो पार पया कहो नानक।

मछली चंद्रावलकान कृष्ण जादम भया पार जात गोपी लै आया बिंद्रावन में रंग किया। कल में वैद्य सर बणू हुआ नाम खुदाई अलह भया नील बस्तर ले कपड़े पहरे।

संध्याबादं सिलपूज बगल समाधम मुखचूठ भूखण सारंग त्रैपाल तिहाल विचारंग मल माला तलक लला टंग दो धोती वस्त्र पाटंग जे जान सबर मंग कर मंग सब फोकट नश्चो कर मंग पाव नानक नेचो त्यावै मन सतगुर वाट न पावे पौड़ी कपड़ सुहावना।

कदंच करुणा न उपर्जते, बिखियंत जीवं वस्यं करोत, नृत्यं क्रोध जथा मर्कट रहै।

अनिक लहरी कलोलते, तावंत जिया बहु प्रकारं अनिक पांत बहु डोलते, नच मित्रं

जीवनंग हर नाम ते आवण है, लभण्यंग साध संगेन नानक हर पुरब पूर्व लिखण है। दसन बिहून पुयंग मंत्रंगारुड़ी निवारं, व्याद उपाड़ संतं नानक लब्ध कर्म।

सब सुख दाता राम है, दूसर नाहिन कोई, कहो नानक सुन रे मना, तेह सिमरत गत हुए, जेह सिमरत गत पाई है, तेह भज रे तै मीत, कहो नानक सुन रे मना, औद घटत है।

दोहरा बाल छुटक्यो बंधन परे कछु न होत उपाय कहु नानक अब ऊट हारो गज ज्यो हो सहाय बल हुआ बंधन छुटे सब किछ होत उपाय नानक सब किछ तुम रह।

राग एक संग पंच बरंदन संग अलापै अठो नंदन प्रथम राग भैरो वै करही पंच रागनी संग उचरही प्रथम भैरवी बिलावली पुनिया की गावह बंगली पुनस लेखी की पई बारी ए भैरो की पाचो नारी।

कैसी तर्फ कौन फन करही, कौन राम गुरु काजा कैसे मरे पव सागर को तरही। कलमा एक नाम कृपा नित जाहे जप एक तपावे, और धर्म ताके समनाहिन ए विद वेद बतावे। सुख दुख रहत सदारण लेपी जाको कहत कुसाई, जो तुभी मैं बसे निरंतर नानक दर्पण चाई। ओठ महला नौवां भाई मैं कह विद लखो कुसाई, महा मोह अज्ञान तिमर मोह मनरो रह उरझाई रहो। सगल जन्म परम ही परम खोयो, न अस्त्र मत पाई ख्या सकत रहो निस्बासर, न छूटी अदमाई। साध संकब हु नहीं कीना, नह कीर्त प्रभ गाई, जन नानक मैं ना को गुण राख लियो सरणाई। छोट महला नौवां माई मन मेरो बस नाही, निस्बासर बिखने सोतावत कह विद ग्रो कोताही। रहो वेद प्राण सिमरत के मत सुन मिख नही बसा।

नैन रहे रंग लाई, अब बेगल कहन न जाई। हमरा परम गया पौ पागा, जब राम नाम चित लागा। रहाओ बाजीगर डंक बजाई, सब खालक तमासे आई। बाजीगर स्वांग सकेला, अपने रंग रवै अकेला। कथ

समुंद बिलोवन को माता ताकि हो हा बिलोवन हारी क्यों मिटे गो छाछ तुहारी चेरी तू राम ना करस पतारा जग जीवन प्राण अधारा रहाओ तेरे गल है तौक पग बेरी तू कर कर रमिया फेरी तू अजहो ना चेतिस चेरी तू जम बपरी है हेरी प्रभ कर्ण करावन हारी क्या चेरी हाथ बिचारी सोई सोई जागी जित लाई तित लागी चेरी ते स्मित कहां ते पाई जाते परम की लीक मटाई सो रस कबीर है जान्या मेरो गुर प्रसाद मन मान्या जह बाज ना जिया जाई जो मिले ता काल अकाई सद जीवन पलो कहां ही मुए बिन जीवन नाही अब क्या कथिया ज्ञान बिचारा निज निरखत गत ब्योहारा रहाओ कस कुंकम चंदन गारिया बिन नैनो जगत निहारिया पूत पिता इक जाया बिन ठाहर नगर बसाया जाचक जन दाता पाया सो दिया न जाई खाया छोड़िया जाए ना मुका और न पह जाना चुका जो जीवन मरना जाने सो पंच सैल सुख माने कबीर है सो तन पाया

Rahal and Diare. अंधियारे दीपक चाहिए एक बस्त अगोचर लहिया बस्त अगोचर पाई काट दीपक रिहा समाई कहे कबीर अब जानिया जब जानिया तो मन मान्या मन माने लोग ना पतीजे ना पतीजे तो क्या कीजे हृदय कपट मुख ज्ञानी झूठे कहा बिलो बस पानी काया मांजस कौन गुना जो कट पीतर है मलना रहाओ लौकी अड़सठ तीरथ नाई कौरापन तो न जाई कहे कबीर।

लहर लहर में उद्दत जल केवल जल माही माधवे क्या कहिए प्रम ऐसा जैसा मान्य हुए न तैसा रहाओ नरपत एक सिंहासन सोया सुपने पया पिखारी अछत राज बिशरत दुख पाया सोगत पई हमारी राज कुयंग पियंग प्रसंग जैसे है अब कछ मरम जनाया अनेक कटक जैसे फूल परे अब कहते कहन न आया सर्वे एक अनेक स्वामी सब कट भोगवे सोई कह रविदास हाथ पै नेरै सहजे हुए सो होई जो हम बांधे मोह फास हम प्रेम बदन तुम बाधे अपने छूटन को जतन करो।

रहाओ, मीन पकर फांक्यो अर काट्यो, रांद कियो बहो बानी, खंड खंड कर भोजन तीनों, कौ न बिसरियो पानी, आपन थापे नाही किसी को, पावन को हर राजा, मोह पटल सब जगत व्याप्यो, भगत नहीं संतापा, कह रविदास भगत इक बाडी, अब इहे कासो कहिए, जा कारण हम तुम अरादे, सो दुख अजहू सही है, दुलभ जन्म पुन फल पायो, वृथा जात अभिविक, राजे इंदर संसर ग्रह आसन, बिन हर भगत कहो कह लेख है, ना बिचार्यो राजा राम को रस, जह रस अनरस बिसर जाही, रहाओ जान अजान पै हम बावर, सोच असोच दिवस जाही, इंद्री सबल निवल विवेक, बुद्ध परमारथ परवेश नहीं, कहियत आन अचीरियत अन, कछ समझ न परे अपर माया, कह रविदास उदास दास मत, पर हर कोप करो जी दया, सुख सागर सुरतर चिंतामन, काम तेन बस जाके, चार पदार्थ अष्ट दशा सद नवनिद कर तलता के, हर हर हर ना जप है रसना, अवर सब त्याग बचन रचना, रहाओ नाना ख्यान पुराण वेद, विद चौतीस अखर माही, व्यास विचार कहो परमारथ, राम नाम सर नाही, सहज समाद उपाद रहत, फुन बड्डे पागल बलागी, कह रविदास प्रगास हृदय, तर जन्म मरण पै पागी, जो तुम गिरवर तो हम मोरा, जो तुम चंद तो हम पै है चकोरा, माधवे तुम ना तोर हो तो हम नहीं तोर है, तुम स्यो तोर कवन स्यो जोग जोर है, रहाओ जो तुम दिवरा तो हम बाती, जो तुम तीरथ तो हम जाती, साची प्रीत हम तुम स्यो जोर।

तुमरे भजन कटहै जम फांसा, भगत हेत गावे रविदासा, जल की पीत पवन का बंपा, रक्त बूंद का गारा, हाड़ मास नाड़ी को पिंजर, पंखी बसे बिचारा, प्राणी क्या मेरा क्या तेरा, जैसे तरवर पंख बसेरा, रहाओ राखो कंद उसा।

चांद कह रविदास चमारा चमरटा गांठ न जनई लोग गठावे पन्हे रहाओ आर नहीं जह तोपो नहीं रात ठाओ रोपो लोग गांठ गांठ खराब गुच्चा हो बिन गांठ जाए पहुंचा रविदास जपे राम नामा मोहे जमसो नाही कामा राग सोठ बाणी भगत तीखन की

पद नहीं उचरै अब क्या करे प्राणी। राम राय हो है वैद बनवारी अपने संत ले हो उबारी। रहाओ माथे तीर शरीर जलन है कर्क करे जे माही। ऐसी बेदन उपज खरी पई वा का औखद नाही। हर का नाम अमृत जल निर्मल एहो औखद जग सारा। गुर प्रसाद कहे जन पीखन पावो मोख द्वारा। ऐसा नाम रतन निर्मोलक पुन पदार्थ पाया। अनेक जतन कर हृदय राख्या रतन न छपे छपाया। हार गुण कहते कहन न जाई जैसे गूंगे की मठियाई। रहाओ रसना रमत सुनत सुख सर्वना चित चेते सुख होई। कहो पीखन दोए नैन संतोखे जय देखा तह सोई। तनासरी महला पहला कार पहला चौपदे एक

साहेब अपना अवर न जांचो कोए, नानक ताका दास है बिंद बिंद चुख चुख होए। साहेब तेरे नाम बिठो बिंद बिंद चुख चुख होए। रहाओ तनासरी महला पहला, हम आदमी हाँ इक दमी मोहलत मोहत ना जाना। नानक बिन वैत से श्रेभो जाके जी प्राणा, अंधे जीवना विचार देख केते के दिना। रहाओ सास मास सब जियो तुम्हारा, तू मैं खरा प्यारा। नानक सायर एव कहत है,

छिपाइए पूरब लिखे का लहना। नाम खसम का चेत न किया कपटी कपट कमाना, जाम द्वार जा पकड़ चलाया।

रहे हम रहन न पाया, जीवत मर रही है तनासरी महला पहला घर दूजा। एक ओ अंकार सत गुर प्रसाद, क्यों सिमरी सिवरिया नहीं जाए, तपे ह्याओ जीड़ा बिल लाए। सिरज सवारे साचा सोए, तिस विसर ऐ चंगा क्यों होए। हिकमत हो।

साहेब पावे सो परवान, सो सेवक दरगह पावे मान। सतगुर की मूरत हृदय बसाए, जो इच्छा सोई फल पाए। साचा साहेब कृपा करे, सो से

जप तप सब इहो शब्द है सार, तना श्री महला पहला। जियो तप्त है बारो बार, तप तप खपे बहुत बेकार। जय तन बाणी विसर जाए,

जे वडी आईया आपे खाए, जे ही सुरत ते है राहे जाए। जे सौ कूड़िया कूड़ कबाड़, पावे सब आखे।

रहाओ। कादी कूड़ बोल मलखाए, ब्राह्मण नावे जिया कहाए, जोगी जुगत न जाने अंध, तीने उजाड़े का बंद, सो जोगी जो जगत पिछाणे, गुर प्रसादी एको जाने, काजी सो जो उल्टी करे, गुर प्रसादी जीवत मरे, सो ब्राह्मण जो ब्रह्म विचारे, आप तरे सगले कुल तारे, दान दान संबंध सोई दिल तोवे, मुसलमान सोई मल खोवे, पढ़िया बूझे सो परवान, जस सिर दरगह का निशान। तना श्री महला पहला कार तीजा, एक

जग पर प्रसट होए, डूबता इव जग कलम है राम नाम सार। अखीता मिठै नाक पकड़ है ठगण को संसार। रहाओ आंट सेती नाक पकड़ है सूझते तन लो, मगर पाछे कछ न सूझै एहो पदम अलो। खतरिया ता धर्म छोड़िया मलेश पाखिया गही, सृष्ट सब एक वर्ण होई धर्म की गत रही। अष्ट साज

सहता सद वा जंत फेरी रहाओ। सहस तब नैन नन नैन है तोहे को, सहस मूरत नन एक तोही। सहस पद बिमल नन एक पद गंध बिन, सहस तब गंध एव चलत मोही। सब में जोत जोत है सोए, तिसके चानन सब में चानन होए। गुरसाखी जोत प्रगट होए, जोत इस पावे।

कारण को हुए जाते तेरा नाम वासा। तनासरी महला तीजा कर दूजा चौपदे एक ओ अंकार सत गुर प्रसाद। इहो तन अखुट ना निखुटे ना जाए पूरे सतगुर दिया दिखाए। अपने सतगुर को सद बल जाई गुर कृपा ते हर मन वसाई। से तनवंत हर नाम लिवलाए गुर पूरे हर तन पर गास्या। हर कृपा ते वसे मन आए रहाओ अवगण काटे गुण हृदय समाए। पूरे गुर के सहज सुपाए पूरे गुर की साची बाणी। सुख मन अंतर सहज समाणी एक अचर्ज जन देखो पाई। दुविधा मार हर मन वसाई नाम अमोलक ना पाया जाए। गुर प्रसाद वसे मन आए सब में वसे प्रभ एको सोए।

ज्ञान चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हम पीखख पेखारी तेरे तू निज पत है दाता, हो दयाल नाम देहो मंगत जन को सदा रहो रंग राता। हो बलिहार जाओ साचे तेरे नाम बिठो, करने कारण सबना का एको अवर न दूजा कोई रहाओ। बहुते फेर पै किरपन को अब किछ कृपा कीजे, हो दयाल दर्शन देहो अपना ऐसी बख्श करी जय। पंत नानक परम पट खुले गुर प्रसादी, जान्या साची लिवलादी है पीतर सतगुर स्यो मन मान्या। तनासरी महला चौथा कार पहला चौपदे एक।

बनवारी। हम पापी पाथर नीर डुबत कर, कर कृपा पाखण हम तारी रहाओ। जन्म जन्म के लागे बिख मोर्चा, लग संगत साध सवारी। जो कंचन बिसंतर तायो, मलकाटी कटत उतारी। हर हर जपन जप्यो दिन राती, जप हर हर हर उर तारी। हर हर हर औखद जग पूरा, जप हर हर हमें मारी। हर हर अगम अगाध बोध, अपरंपर पुरख अपारी। जन को कृपा करो जग जीवन, जन नानक पैज सवारी। तना श्री महला चौथा। हर के संत जना हर जप्यो, तनका दुख परम पौ पागी। अपनी सेवा आप कराई, गुरमत अंतर जागी। हर कै नाम रता बैरागी, हर हर कथा सुनी मन पाई। गुरमत हर लव लागी, रहाओ संत जना की।

बुलागी, क्या हम कर्म नान निकतीरे। तुम वड पुरख वडागी, तुमरी गात मित कह न सक है, प्रभ हम क्यों कर मिल पागी। हर प्रभ स्वामी कृपा तार हो, हम हर हर सेवा लागी। नानक दासन दास करो प्रभ हम, हर कथा कथागी। तनासरी महल्ला।

गुर सिख मीत चलो गुर चाली, जो गुर कहे सोई पल मानो, हर हर कथा निराली रहाओ, हर के संत सुनो जन पाई, गुर सेव हो बेग बेगाली, सतगुर सेव खर्च हर बाधो, मत जानो आज कै काली, हर के संत जपो हर जपना।

हर कृपा कर बनवाली, जन नानक संगत साध हर मेल हो, हम साध जना पगराली। तनाश्री महला चौथा, हर हर बूंद पे हर स्वामी, हम चात्रक बिलल बिललाती, हर हर कृपा करो प्रभ अपनी, मुख देवो हर निम खाती, हर बिन रह न सको इकराती, जो बिन अमले अमली मर जाई है, त्यो हर बिन हम मर जाती रहाओ, तुम हर सर्वर अत अगा हम, लह न सक है अंत माती, तू परे परे अपरंपर स्वामी, मित जानो आपन गाती, हर के संत जना हर जप्यो, गुर रंग चलू लहराती, हर हर भगत बनी अत सोबा, हर जप

शरणागत प्रतपालक हर स्वामी जो तुम देहो सोई हो पाओ दीन दयाल कृपा कर दीजे नानक हर सिमरण का है चाओ। तनासरी महला चौथा सेवक सिख पूज

जात है उपाद गत, तिनी बड़भागी हर जपना, जन नानक कौ गुर एह मत दीनी, जप हर पवजल तरनाथ नाथरी।

मेरे कहा तू सबना कहे एक दात, सबको तुझ ही विच है मेरे कहा, तुझते बाहर कोई ना है, सब जिया तेरे तू सब सुदा मेरे कहा, सब तुझी माहे समाहे सबना की तू।

दे। एक ओंकार सतगुर प्रसाद पव खंडन दुख भंजन स्वामी भगत वचल निरंकारे कोट पराद मिटे खन पीतर जा गुरमुख नाम समारे मेरा मन लागा है राम प्यारे दीन दयाल करी प्रभ कृपा वस कीने पंच दुतारे रहाओ तेरा थान सुहावा रूप सुहा।

पांजमा बिन जल प्राण तजे है मीना जिन जल स्यो हेत वडायो कमल हेत बिन स्यो है पवरा उन मार्ग निकस न पायो अब मन एकस

साहब जीओ, सतनाम श्री वाहिगुरु साहब जीओ, सतनाम श्री वाहिगुरु साहब जीओ, वाहिगुरु

क्या अग्नि पार प्रभ कथन न जाए अकत नानक प्रभ शरणागति राखण को सम्रत शांत जो जाने तो राख हर प्रभु तेरिया किते गणो असंख अवगुण मेरिया असंख अवगुण खते फेरे हित प्रात सद भूलिया मोह मगन विकराल माया तो प्रसादी कूलिया लोग करद विकार विखड़े प्रभ निरभूत नेरिया लोग करद विकार विखड़े प्रभ निरभूत नेरिया बिन मत नानक दया तारो काड़ पौजल फेरिया लोग करद विकार विखड़े प्रभ निरभूत नेरिया बिन मत नानक दया तारो काड पवजल फेरिया। जय श्री मोहल्ला पंजवा। वर्ष लोगों नाल एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्लोक आद पूर्ण मध पूर्ण आंत पूर्ण परमेश्वर है सिमरंत संत सर्वत्र रमण नानक अगनासन जगदीश्वर है पेखन सुन सुनावनो मन में दृढ़िये साच पूर रहो सर्वत्र मैं नानक हर रंग राच पौड़ी हर एक निरंजन गाई है सब अंतर सोई करण कारण

ज्ञान ब्रह्मांड पाताल दीप रब्या सब लोई, जिस आ बुझाए सो बुझसी निर्मल जन सोई। सलोक रचांत जी है रचना माध गर्भ स्थापन साध साध सिमरंत नानक महा अग्ना विनाशन। मुख तले पैर उपरे बचंदो को छड़े ताए नानक सो तनी क्यों बिसारियो उदरे जिस दै नाए। पौड़ी रकत बिंद कर निम्या अग्न उदर मजार उर्द मुख को चील बेकल नारक कोर गवार। हर सिमरत सूना जल है मन तन उड़तार इकन थान हो जिने रखिया इस तिलना विसार। प्रभु विसरत सुख कदे नाहे जाते जन्म हार। सलोक मन इच्छा दान करण फिर बत्तर आसा पूर्ण है खंडन कल कलेश है। प्रभु सिमर नानक नै दूरण है हव रंग मान है जिस संग पैसो लाइए ने हो सो सौ बिंदना बिसर नानक जिन सुंदर रचिया देहो। बौड़ी जीव प्राण तन धन दिया दीने रस भोग गृह मंदिर रस हस दिए रच पले संजोग। तुस बंता साजन सेवक दिए सब देवन जोग हर सिमरत सन मन हरिया लह जाए बिजोग। साध संग हर गुण रमो मिनसे सब रोग। सलोक कुटुंब जतन करण माया अनेक उद्यम है हर भक्त पावहीन नानक प्रभु।

पितृ तन भस्म होए कहते सब प्रेत खिन गिर मैं ग्रह मैं प्रसन्न देवी जिन सो सोई हेत कर नर्त दर्प संचया सो कार्य केत जैसा बीजे सूलना कर्म एहो केत कृत कणा हर विसरिया जोनी परमेत सलोक कूड़दान स्नान अनक शोधन पवित्रता पवित्रता है उच्चरांत नानक हर हर रचना सर्व पाप विमुचते सन की सोम कणा पूरी दीतम पाहे मन विसंदरु सच सह नानक खबे दुखड़े उलाहे पौड़ी कूट अब सब नाश होए सिमृत हर नाओ मन चिंदे फल पाई है हर के गुण गाओ जन्म मरण पै कटी है निचिल सच सच था।

नानक लीला राजरस रूपम चतुर संवर सक्स आसन चांस मूड अज्ञान है नानक सुपन मनोर सुमाया सुपने

सुपने से तीचे तो मूर्ख लाया बिसरे राज रस पोग जागत पकला आया बिसरे राज रस पोग

राज सुख मिश्रम नाच भोग रस मिश्रम नाच मिश्रम सुख माया विष्णु साध संग हर नानक दास मिश्रम प्रभु दर्शनम लगड़ा सोले हो मन मजाऊ रत्या बिछड़ो सच थोक नानक मिठा सोचणी पावड़ी हर बिन कछु न लागई भक्तन को मीठा आन स्वागत पीकिया कर निर्णो जीठा अज्ञान परम दुख कटिया गुर भय बसीठा चरण कमल मन बेदया जो रंग मजीठा जियो प्राण तन मन प्रभु बिन से सब झूठा सलोक त्यागत चलन न जीव मीनम न त्याग चतरक मेघ कन मंडल है बाण विदंत कुरंक नादम बाल बाण विदंत कुरंक नादम आल बंधन कुसुम बासना है चरण कमल रचंत सांसे नानक आनन रुचिते मुख दिखाऊ पलक छड़ आन देउ चित जीवन संगम जिते सणी हर नानक संता मित पौड़ी जो मछली बिन पाड़ी है जो जीवन पावै बूंद भी होना चातर को तू कर वर्तावै नाद क्रम

है देख दर्श अगावे श्लोक चित बंत चरण कमलम साध साध आराधन है न विश्रांत नाम अच्युत नानक आदि पूर्ण परमेश्वर है शीसड़ा मन मन जाहे पालकना तीवे बाहरा नानक आसरी निभाहे सदा पिखंदु सच तनी पौड़ी आशा बंती आस गुसाई पूरी है मिल गोपाल गोविंद ना कभू चूरी है देव दर्श मन चाओ लह जाए भी सूरी है हुई पवित्र शरीर चरना सूरी है पार ब्रह्म गुरुदेव सदा दूरी है श्लोक रसना उच्चरांत नाम रबं सुनत शब्द अमृत रह नाग

बेला को कौन है कि तब को पाई तू मूर्त पला संजोग है किस मिले गुसाई आठ पैर हर त्याय कह मन इच पुजाई बड़े पाग सत्संग हुए निबला जा पाई मन दर्शन की प्याज है नानक बल जाई सलोक पतक पुनीत गोविंद है सर्व दुख निवारण है शरण सूर भगवान है जो पांच नानक हर हर हरे चढ़ हब आप लगड़ो चरना पास नठो दुख ताप नानक तब पिखंदया पौड़ी मेल लेहो दयाल टैपे द्वारिया रख लेवो दीन दयाल प्रमुख बभारिया पग बचल दयाल सागर संसारिया सलोक संत उदरण दयालम आसन

मेरे कुटुंब संग लोग कुल सवाया लोक गुरु गोविंद गोपाल गुरु गुरु पूर्ण नारायण है गुरु दयाल सम्राट गुरु गुरु नानक पथ सुधारण है पौजल बिकुंस गाह गुरु बोह सह तारियम नानक पूर करम सतगुरु चरणी लग्या पौड़ी धन धन गुरुदेव इस संग हर जपे गुर कृपाल जब पे आपगुण सब छपे पार ब्रह्म गुरुदेव नीचो उच सपे काट सिर्फ दुख माया कर लीने अपद से गुण गाए बेबेंद बेअंत रसना हर जसे सलोक इष्टांत एको सुनियांत एको प्रतांत एको नरहर है नाम दान जचांत जा जांत नानक दयाल पुर कृपा कर एक सेवी एक समला हर एक पहर दास नाम नाम बकर तन संचया नानक सच्ची रात पौड़ी प्रभु दयाल बेअंत पूर्ण एक एहो सब कुछ आपे आप दूजा कहा के हो आप करो सब प्रभु आप करो।

राव तुम कहियत हो जगत स्वामी हम कहियत का जूते कामी इन पंचर मेरो मन जो बिगारियो पल पल हर जिते अंतर पारियो जब देखो सब दुखी राशि अजो न पताए ने पैसा की गौतम नर उमापति स्वामी शिष्य सहज पगगामी इन दूसन काल

सके मन मेरा, मेरे प्रीतम प्राण हर प्रभ गुर मिले, बहर ना पावजल फेरा रहाओ। मेरे हीरे लोच लगी प्रभ केरी, हर नैनो हर प्रभ हेरा, सतगुर दयाल हर नाम दृढ़ाया, हर पादर हर प्रभ केरा, हर रंगी हर नाम प्रभ पाया, हर गोबिंद हर प्रभ केरा, हर हृदय मन तन मीठा लागा, मुख मस्तक पाग चंगेरा, रूप विकार जिना मन लागा, हर बिसरिया पुरुष चंगेरा, कोई मन मुख मूड अज्ञानी कही है, तिन मस्तक पाग मंदेरा, विवेक बुद्ध सतगुर से पाई, गुर ज्ञान गुरु पव केरा, जन नानक नाम गुरु से पाया, हर मस्तक पाग लिखेरा, टूडी माला पंजवा कर पहला दो पदे, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, संतन अवना काहू जानी, बेप्रवाह सदा रंग हर के, जाको पाक स्वामी राव, पूज समाना ठाकुर तेरो, अवना काहू तानी, ऐसो अमर मिलु पावन को, राच रहे रंग ज्ञानी, रोग शोक दुख चरा मरा, हर जने नहीं निकटानी, निरपो होए रहे लिव एक नानक हर मन मानी, टोडी महला पंजवा हर बिसर सदा खुआरी, भागो सोखा कहा व्याप जाको ऊट सुहारी राव, बिन सिमरन जो जीवन बलना, सर्व जैसे हर जारी, नव खंडन को राज कुमावे, आंत चले गोहारी, गुण निदान गुण तिन ही जा गावे, जाको कृपा तारी, सो सुखिया तन उस जन्मा, नानक दिस बलिहारी, टूटी महला पंजवा कर दूजा चौपदे, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, तायो रे मन दैस तायो, माया मग्न स्वाद लोभ मोहयो, तिन पब आप पुलायो राव, हर कथा हर जग साध संगत, सो एक मोत नए मन लायो, भिक्षु पेक रंग सम को, प्रारूप के पर गृह जो न जायो, भिक्षु पेक रंग सम को, पर गृह जो न जायो, चरण कम सु पाओ न कीनो, नै सतपुरख मनायो, सावत को सावे बोपाती, जो सेली बल परमायो, नाम दान स्नान न कियो, एक निमित न कीर्त गायो, नाना चूट लाए मन सोखियो, न बूझो अपनायो, पर उपकार कबू की, पर उपकार न कबू किए, नहीं सतगुरु से वित्ते आयो, पांच दूत राज संगत गोष्ट, मत मारो मत मायो, करो बेनती साध संगत हर, भगत बचन सुने आयो, नानक पाग पर्यो हर पाछै, राख लाज पनायो, टूडी महला पंजमा मान मुख बिन बूझे बिरथा आया, अनक साज सिगार बह करता, जो मृतक उड़ाया रहो, ताए ताए कृपण शर्म कीनो, एकत्र करी है माया, दान पुण्य संतन सेवा, किसी काज न आया, कर अपारण सवारी से जा, कामन साज बनाया, संग न पायो अपने पर से, पेक पेक दुख पाया।

ऐसी बुद्ध करो परगासा, लागे प्रभु संग भीत राओ, दास मारे की पावो सूरा, मासक ले ले लावो, मां पद से होत पनीता, हर कीर्तन गुण गाओ, आज्ञा सुमरी मीठी लागो, कियो तुहारो पावो, जो तू दे सही से सिर्फ

पर कछु मेरे संग न चाले, मिली कृपा गुण काम राओ। राज माल अनेक भोग रस, सगल तर्ब की शाम। ताय तय बहुत को सावे, सगल नरात्र नरात काम। बिन गोविंद

सुख इस मन को बर्तन ए हमारा है राव नाम चाहत नाम मेरी पत है नाम मेरे परिवार है नाम सिखाई सदा मेरे संग हर नाम को निस्तार है बिखी बलाद कहियत बहुत तेरी

राखी प्रभ आ गए अरदास। संत प्रसाद वैद नारायण करण कारण प्रभ एक, बाल बुद्ध पूर्ण सुखदाता नानक हर टेक। टोली महला पंजवा हर हर नाम सदा सद जाप, तार अनुग्रह पार ब्रह्म स्वामी बसी कीनी आप राव। जिसके सिर फिर जिसके से फिर चिन्ह ही संभाले, बिनसे शोक संताप हो, आधे राखे जने अपने हर हुए माई बाप हो। जी जंद हुए मेहरबाना दया तारी हर नाथ, नानक सन परे दुख भंजन जाका बड़ बरताप। टूटी महला पंजवा स्वामी सन पर हर स्वामी सन पर दरबारे, कोट अपराध खंडन के दाते कुछ बिन कौन उदारे। राव खोजत खोजत बहु प्रकारे सर्व अर्थ विचारे, सा संग परम कद पाई है माया रच बंद हारे। चरण कमल संग पीत मन लागी सुरजन मिले प्यारे, नानक आनंद करे हर जप जप सगले रो निवारे। टोडी महला पंजवा कर तीजा चौप दे एक ओकार सतगुर प्रसाद, हां हां लपटोरे मूड़े कछु न छोरी तेरो नहीं सो जानी मोरी। रहाओ आपन राम न चीनो खिनुआ, जो प्राय सो अपनी मनुआ। नाम संगी सो मन ना बिसायो, छोड़ जाए बाहु चित लायो। सो सचो जित पूक सिसायो, अमृत नाम सोसा नहीं पायो। काम क्रोध मोह कुप परया, गुर प्रसाद नानको चरया। टोडी महला पंजवा मारे एक हरी हरी आन।

करतय कुशल सबके मां आचार व्यवहार जात हर दुनिया महा आनंद कीर्तन हर चुनिया को नान जिन ठाकुर पाया सब कुछ तिसके गृह में आया टूडी माला।

बुध पाई मैं साधु कन्हो लेख लिखो सुरमात ए बतनान करण अलोए टूटी माला पंजमा कर गहलो मूलो ह्योरे यू महाराज महाराज री मायो यू महाराज री मायो जिहर न्यायी मोहे प्याक्यो रे राहो कणो कणो कणो सद लूड़ लहने कैठे पायो रे महाराज रो गास बहु स्यो लुबड़ो पागड़ो ओ ओ पाए समझोयो रे सुन मन सीख साधु जन सगलो सारे सगले प्राचित मिट्यो रे जाको लहनो महाराज नी गाठड़ियो तार गर्भासना पौड़ियो रे टोडी माला पंजमा कर पंजमा गोप दे एक ओ कर सतगुर प्रसाद ऐसो गुण में ऐसो गुण मेरो प्रभु जी के न पांच जोकर अहम रोग है साते सगल दूर की राव बंदर चोर चोर बिख्याते गुरु को शब्द मेरा ही रह दीना रूप अनुरूप मोर हो कचना बिचारियो प्रेम के हो मोहे हर रंग पीना पियो लालन पाट बीच खोए अण चिता हर के पतीना किसी को गिरो सोई प्रभ नानक सो ठाकुर किसी को तीना टोडी महला पंजवा माई मेरे मन की प्रीत यही कर्म धर्म जप एही राम नाम निर्मल है रीत राव प्राण आधार जीवन तन मेर मोरा लेकिन को दर्शन प्रभ नीत बाढ़ काट सोसा संग मोरा मन अपने को हर सका कीत संत प्रसाद पै मन निर्मल कर कृपा अपने कर लीत सिमर सिमर नान सुख पाया आदि जगत पद।

भगत को पूर्ण दान रहाओ खूब पारो राख मेरे प्रीतम अंत जामी सुकृत सुजान कोट राज नाम तन मेरे अमृत दिश तारो प्रभ मान आठ पैर रत्ना गुण गावे चतुर अकावे

ते माया के साधु संकत मिटी बिसूर सुख संपत भोग के मिन हर नानक जाने कूर। टोडी महला पंजमा माई मेरे मन की प्यास एक खिन रह न सको बिन प्रीसमा दर्शन देखन को तारी मन आस राव। सिमरो नाम निरंजन करते मन संते सब किल विकनास पूर्ण पार ब्रह्म सुख सुख दाते नासी बिमल जाको जास। शांत प्रसाद मेरे पूर मनोरथ कर कृपा पेटे गुण सासो। सांस सह सुख मन उपजियो सूर सूर नानक प्रगास। टोडी महला पंजमा हर हर पथ पावन जी प्राण मान सुख दाता अंतर जामी मन को पावन राव। सुंदर सुगर चतुर सब बेता सिद्धार्थ निवास पग गुण गावन। निर्मल रूप अनूप स्वामी कर्म पूर्ण बीजन सो खावन। विष्णु विष्णु पै विस्माता आनंद बियो दूसर लावन। प्रसन्ना सिमर सिमर जत जीवा नानक दास सदा बल जावन। टोडी महला पंजमा माई माया छल तिनकी अगन मेघ की छाया गोबिंद भजन बिन हर का जल राव। छोड़ सियाणप बहु चसराई जोय कर जोड़ साध मग चल। सिमर स्वामी अंतर जामी मानक देखा एह उसम उसम फल। वेद बख्यान कर साधु जाना पागिन समझ नहीं खाल। प्रेम पक्ष रचे जन नानक हर सिमर दह।

राग बैराड़ी महला चौथा कर पहला दो पदे एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद सुन मन अकथ कथा हर नाम रिद्ध बुद्ध सिद्ध सुख पावे भज गुरमत हर राम राम राव नाना ख्यान पुराण जस उत्तम कर दर्शन गावे राम शंकर करोड़ तेतीस त्यायो नहीं जान्यो हर मैर माम सुर नार गण गंधर्व जस गावे सब गावत जे तो पाम नानक कृपा करी हर जिन को ते संत भले हर राम बैराड़ी महला चौथा मन मिल संत जना जस गायो हर रतन रतन हर नीको गुर सत गुर जान दिवायो रहो इस जन को मन तन सब देवो जिन हर हर नाम सुनायो धन माया संपे तिस देवो जिन हर मीत मिलायो इन किंचत कृपा करी जगदीशर तब हर हर हर जस त्यायो जन नानक हर भेटे स्वामी दुख होमे रोग गवायो बैराड़ी महला चौथा हर जन राम नाम गुण गावे जो

कुटंतर के पाप सब खोवै हर पाप जल पार उतारा रहो काया नगर बस्त हर स्वामी हर निरपो निर्वैर निरंकार।

आप रतन हीरा हर आप किया पासारा नानक जिस कृपा करे सो हर नाम विहाजे सो साहो सच्चा बनजारा बैराड़ी महला चौथा जप मन हर निरंजन निरंकारा सदा सदा हर ध्याये सुखदाता जाका अंत ना पारा वारा राव अगन कुंट मैं उर्द लिव लागा हर राके उदर मजारा सो ऐसा हर सेवो मेरे मन हर अंत छा बनारा जाके हृदय बसिया मेरा हर हर इस जन को करो नमस्कारा हर कृपा ते पाइये हर जप नानक नाम अदारा बैराड़ी महला चौथा जप मन हर हर नाम नित ध्याए जो इच्छे सोई पल पावे फिर दुख न लागे आए रहो सो जप सो तप सा व्रत पूजा जित हर स्यो प्रीत लगाए बिन हर प्रीत होर प्रीत सब झूठी एक गिन मैं बिसर सब जाए तू वे अंत सर्व कल पूरा किच कीमत कही न जाए नानक सरण तुहारी हर जियो भावे तिवे छाए राग बराड़ी महला पंजा।

जन्म के दुख गवायो, रहाओ जो चाहत सोई मन पायो, कर कृपा हर नाम दवायो, सर्व सुख हर नाम वडाई, गुर प्रसाद नानक मत पाई, राग तलंग महला पहला, घर पहला एक ओंकार, सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर, अकाल मूर्त अजूनी सै भंग गुर प्रसाद, यत अर्ज गुप्त पे तुदा।

सो पाइये और कैसी चतुराई। सो नजर करे देखे सो दिन लेखे कामण नो निद पाई। अपने कंत प्यारी सास सुहागण नानक सास बराई। ऐसे रंग राती सहज की माती एन जपाई सुमाणी।

गर्भ को राय, दिल कब्ज कब जा कादरो, दूजक सजाए बलि नियामत, बिरादरा दरबार मिलक कनाए, जब अजराई

सत्वा एक ओंकार सतगुर प्रसाद जोग न किंता जोग न डंडे जोग न पसम चढ़ाइय जोग न मुंदी मूंड मडाइय जोग न सिंगी वाइय अंजन माहे निरंजन रहिए जोग जोगत इव पाइये गली जोग न होई

संत प्राण धन तिस्तापनहार भाई मीत सुत सगलस्ते जी हूं ते प्यारा राहो केसा का कर बीजना संत चौर टलावो शीस निहारो चरण तल धूर मुख लावो मिष्ट बचन बेनती करो दीन की न्याई ताज निहारो चरण तल धूर मुख लावो ताज अभमान सरणी परो हर गुण निद पाई अवलोकन पुनः पुनः करो जन का दरसार अमृत बचन मन में सिंचो बंदो बार बार चितवो मन आशा करो जन का संग मांगो नानक प्रभु दया कार कर दास चरणी लागो सुही महला पांचवा जन्म हे ब्रह्मांड खंडता हूं मैं पाओ राख लियो एहो बिखई जियो देओ अपना नाम रहाओ जाते नाही को सुखी ताके पाछे जाओ छोड़ जाए जोग सगल को फिर लपटाओ करो कृपा करुणा पते तेरे हर गुण गाओ नानक की प्रभ बेनती साध संग समाओ राग सूही महला पंजमा घर पंजमा पड़ताले क्यों कार सतगुर प्रसाद प्रीत प्रीत गुरिया मोहन लालना जप मन गोविंदे कै अवर नहीं को लेखै संत लाग मन शाड दुबदा की कूरिया राव निर्गुण हरिया सरगुण धरिया अंक कोठनिया भिन्न भिन्न भिन्न भिन्न करिया विच मन कोटवरिया निज मंदर प्रिया तहां आनंद करिया नह मरिया नह जरिया कीर्तन जुड़िया बहुविध फिरिया पर कौहिरिया बिखना किरिया अब साधु संग परिया हर द्वारे खरिया दर्शन करिया नानक गुरमिरिया बहर न फिरिया सूही महला पंजमा रास मंडल कीनो आकारा सगलो साज रखियो पसारा रहाओ बहुविध रूप रंग पारा पेखै खुशी वेखै खुशी भोग नहीं थारा सब रस लैत बस्त निरारा वर्ण चिहन नाही मुख न मसारा कह न जाई खेल तुम्हारा नानक रेण संत चरणारा सुही महला पंजमा तौ मैं आया सरणी आया भरोसे आया कृपा आया ज्यो भावै त्यो राखो स्वामी मार्ग गुरै पठाया रहाओ महा दुतर माया जैसे पवन चुलाया सुन सुन ही डराया करो धर्म राया ग्रह अंधकूप आया पावक सगराया गही ओट सदाया नानक हार त्याया अब मैं पूरा पाया राग सूही महला पंजवा घर छेवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सतगुर पास बेनंतियां मिले नाम आधारा तुठा सच्चा पातशाह ताप गया संसारा भगता की टेक तू संता की ओठ तू सच्चा सज्जनहारा राव सच तेरी समग्री सच तेरा दरबारा सच तेरे खजीनिया सच तेरा पसारा तेरा रूप गम है अनूप तेरा दरसारा।

पंजमा सगल त्याग गुर सरणी आया राखो राखण हारे जे तू लावे ते हम लागे क्या जंत बिचारे मेरे राम जी तू प्रावे अंतर जामी कर कृपा गुरदेव दे अल्ला गुण गावा नित स्वामी रहाओ आठ पैर प्रभ अपना त्याई गुर प्रसाद पौ तरिय आप त्याग हो सब रेणा जीव त्याय मरिय सफल जन्म तिसका जग भीतर साध संग नौ जापै।